0: नमस्कार, दिल की आवाज़ सुनने वाले सभी श्रोताओं को शाइनी का सलाम, नमस्कार और आदाब। और हर बार की तरह आज भी लेकर आई हूँ आपके लिए प्यार, एहसास, मुस्कुराहट, कुछ खूबसूरत बातें और दिल से निकली हुई कुछ ऐसी आवाज़ें जो सीधे आपके दिल तक पहुँचती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी नहीं होती, लेकिन अगर हम हर पल को प्यार से जी ले तो छोटी छोटी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। तो आइए कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियों को भूल जाएं, चेहरे पर थोड़ा स्माइल लाइए, दिल को थोड़ा हल्का कीजिए और जुड़ जाइए अपने पसंदीदा प्रोग्राम दिल की आवाज़, दिलों से दिल तक। तो शायद पहला कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज़ में स्वागत।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते, कैसे हो?
1: अच्छे हो जी।
0: हम ठीक है, आप बताओ।
1: मैं एक गाना बुझा है, जिंदगी एक सफर सुहाना, यहाँ कल क्या हो कितने जाना ये गाना।
0: सच में कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इसीलिए प्यार सा गाना हम आपके लिए जरूर लगा देंगे। और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

0: दिल की आवाज़ में आपका फिर से स्वागत, और शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज़ में स्वागत।
1: हाँ शायनी जी, नमस्ते जी।
0: जी नमस्ते, कैसे हो?
1: जी मैं हूँ कोयवड़ा तेवरेगर से बुलाने वाला पीके जी।
0: जी नमस्ते।
1: और नहीं, गए हफ्ते में मैं बहुत कोशिश किया था मगर नहीं मिला।
0: अच्छा जी, और सुनाओ?
1: जी क्योंकि अभी तो ठीक है, क्या चल रहा है इंडिया में, तो अपने भारत में क्या क्या हालत चल रहा है, दिल्ली में वो क्या मलयालम में एक बात बोलता है ना, एक कहावत है मलयालम में, मत्तन कूतियाल कुंभड़ा मुड़की। वो एक आदमी मेहनत करता तो और एक आदमी उसका फायदा लेता है।
0: जी
1: यही चल रहा है
0: जी।
1: वो केरला से भी दो तीन यानी कि अपना राष्ट्रीय नेता लोग जाके बोलता है, हम लोग आगे किया है, हम लोग ही किया वो सब, मगर उधर नौजवान लोग सब मिलके वो अच्छा से काम किया है।
0: जी
1: आजकल का न्यू जनरेशन है, मगर वो लोग बहुत मुश्किल से वो आगे बढ़ाया। तो यहाँ से केरला से जाके बोलता है कि हम लोग कोशिश करके वैसा उसको राजी कर दिया, ऐसा बोलता है। क्या क्या चल रहा है आजकल? और क्या जी बोली?
0: बस यहाँ पे सब ठीक है। और
1: मैंने तो डर फिल्म का गाना पूछा है।
0: कौन सा गाना चाहिए?
1: ओ तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं, तू मेरी हो गई, मैं तेरा हो गया, मैं तो एतबार करूं। बहुत बढ़िया गाना है ना वो उदित नारायण का।
0: जी तो ये प्यार सा गाना हम आपके लिए जरूर लगा देंगे। हाँ जी, और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।
2: तुझको देखूं कि प्यार करूं,

0: दिल की आवाज़ में आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, ज़िंदगी में हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छा होता है। शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज़ में स्वागत। जी नमस्ते नमस्ते, कैसे हो?
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
0: और बस यहाँ पे तो सब ठीक है, आप बताओ?
1: सब ठीक है। ओके ओके, आपने गाना बना था आज से पहले, आज से प्यारा, आज से पहले, आज से प्यारा, खुशी आज तक नहीं मिली इतना सुहाने, ऐसी चीजी इतना सुहाने, ऐसी चीजी घड़ी आज तक नहीं मिली।
0: ओके जी, तो ये प्यार सा गाना हम आपके लिए जरूर लगा देंगे। और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

0: दिल की आवाज़ में आपका फिर से स्वागत। और जैसे कि हमने कहा, ये हमारा सीधा प्रसारण है, तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिएगा। हाँ जी, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0474293111। नंबर एक बार फिर से 0474293111। और यहाँ पे हम यानी शाह इंजन में बैठी हैं आपसे बहुत सारी खट्टी मीठी बातें करने के लिए। हाँ जी, पता है दोस्तों, कभी कभी जब आपस में बहुत सारी क्या बोलते हैं ना तकरार होती है, तो कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। और शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज़ में स्वागत।
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते नूर जहां जी, कैसी हो?
1: अच्छा हूँ।
0: हम ठीक हैं, आप बताओ।
1: मुझे एक गाना चाहिए।
0: हाँ, कौन सा गाना चाहिए?
1: आज कारगिल दिवस है।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत है। और जैसे कि हमने कहा, ये हमारा सीधा प्रसारण है, तो जल्दी जल्दी कॉल करना। हाँ जी, पता है दोस्तों, एक छोटी सी मुस्कान किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। इसीलिए शाइनी हमेशा कहती है कि हमेशा मुस्कुराते रहो। हाँ, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, क्योंकि आपकी मुस्कान शायद किसी की उम्मीद हो। तो शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: मैडम
0: नमस्ते जी, कैसे हो?
1: मुंडेकर बात कर रहा।
0: नमस्ते नमस्ते, और सुनाओ?
1: ठीक है,
0: सब ठीक, आप बताओ?
1: हम सब ठीक है। आज का अमिताभ बच्चन का तूफान है, कूली फिल्म का कोई भी गाना चलेगा।
0: ओके ओके ओके ओके, तो
1: डेडिकेशन है।
0: हाँ बताओ।
1: ये चातन और विजय चेतन कर रहे हैं।
0: ओके जी, तो चातनूर से विजयन जी के लिए प्यारा सा गाना हम जरूर लगा देंगे। हाँ जी, और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, कभी कभी हम लोग लोगों के बीच रहकर भी अकेले होते हैं, और कभी कभी किसी एक की आवाज हमें फिर से अपना सा महसूस कराता है, क्योंकि रिश्ते बड़ी बड़ी बातों या बड़ी बड़ी वादों से नहीं होता, छोटी छोटी परवाह से मजबूत होती है। कभी अगर हमने किसी से पूछ लिया, तुम ठीक हो ना, शायद किसी को ये एक सवाल ही सबसे ज्यादा सवाल की ही शायद सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो कभी कभार किसी से पूछ लीजिए, आप ठीक हो ना, तुम कैसे हो, खाना खा लिया। ये जरूरी नहीं कि बहुत सारी बातें करें, वन स्मॉल क्वेश्चन, आर यू ओके, वो एक सेंटेंस ही क्या बोलते हैं ना, बहुत अपना सा, बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है अपनों को। शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: नमस्ते शैनी जी।
0: नमस्ते जी, कैसे हो?
1: अच्छा, बहुत बहुत मायने हुए है बुला के। हाँ, पोर्टुगलम से।
0: पता है। और सुनाओ।
1: पता नहीं, आजकल बुखार ज्यादा है सब लोगों।
0: हाँ और सुनाओ।
1: हमें भी बुखार था आजकल, दो दिन हुआ, थोड़ा अच्छा है।
0: अच्छा जी, हाँ।
1: और एक फिल्म गाना चाहिए था।
0: कौन सा गाना चाहिए?
1: निमक्कलाल फिल्म में, आज जरा पट जाए तो हमें ना उठाइयो, वो गाना अमिताभ बच्चन का।
0: ओके जी, तो ये प्यार सा गाना बहुत प्यारा था, मीन्स उस जमाने में बहुत हिट गाना था ये जी। तो आपके लिए प्यार सा गाना हम जरूर लगा देंगे, और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत और जल्दी जल्दी कॉल करना। हाँ जी, शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: मैं तो प्रकाश बोल रहा हूँ
0: जी। नमस्ते, कैसे हो?
1: नमस्ते नमस्ते, सब ठीक है।
0: और सुनाओ, कौन सा गाना चाहिए?
1: एक गाना बताया दिल से
0: जी।
1: ठीक है, सुन रहा नहीं जा रहा।
0: हेलो,
1: हाँ बोलिए मैडम।
0: कौन सा गाना चाहिए?
1: मैं दिल से, मैं चाहिए थे यार, आज सब लोगों का खुशी में है ना, गाना पूरा सब ठीक है।
0: अच्छा जी, तो
1: ये गाना पूरा बहुत अच्छा गाना है।
0: अच्छा जी, तो ये प्यारा सा गाना हम आपके लिए लगा देंगे। हाँ जी, और दिल की आवाज में बनाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, हर खूबसूरत मुलाकात की तरह आज का ये जो खूबसूरत सफर था वो हमारी आखिर यानी कि आखिर मंजिल तक पहुंचने ही वाली हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, रेडियो बंद हो सकता है, कार्यक्रम ख़त्म हो सकता है, गीत रुक सकता है, लेकिन दिलों की बातें ना, दिलों के बीच की बातें बनी हुई जो खूबसूरत खड़ी और जो हमने जो बातें की ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ जी, आज अपने आपने अपनी आवाज़ से इस कार्यक्रम को सजाया, अपनी बातों से इसे बहुत खूबसूरत बनाया और आपने प्यार से इसे पूरा भी किया। मैं दिल से आप सभी से शुक्रिया अदा ज़रूर कहना चाहूँगी, उन सभी दोस्तों का जिन्होंने हमें सुना, फ़ोन किया, संदेश भेजा और अपने दिलों की बात हमसे बांटी हैं। और ज़िंदगी में अगर कभी रास्ते मुश्किल लगे तो रुकिएगा नहीं, हाँ, अगर कभी दिल उदास हो तो खुद को ज़रूर संभालिए। अगर कभी लगे कि कोई आपको नहीं समझता तो याद रखिए कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी आवाज़ ज़रूर होगी जो आपकी खामोशी भी समझेंगी। अब जब भी आपका दिल कुछ कहना चाहे तो अपनी आवाज़ को कभी मत दबाना, क्योंकि आपकी आवाज़ हमेशा हमेशा मायने रखती है। तो शायद क्या बोलते हैं ना, हमेशा याद रखना कि कभी खुद को अकेला कभी मत समझना। हाँ, और एक गाना सुनकर लौट आते हैं।

दोस्तों, आपकी आवाज मेरी आवाज और हमारे दिलों की धड़कन से बनी हुई एक खूबसूरत आवाज, दिल की आवाज, इस प्यार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, जिंदगी खूबसूरत है, बस इसे महसूस करने वाला दिल चाहिए। और इस प्यारे से विचार के साथ आपकी शाइनी जर्मियास लेती हैं आपसे विदा। अगले हफ्ते मिलने तक नमस्कार।